0: ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯗꯣꯅꯦ ꯂꯨꯋꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯅꯦꯠ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯠ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
6: We signed this year a free trade agreement with Europe.
7: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
6: to find common ground

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीलीय अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding, MOU, with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
6: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
5: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
7: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
5: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
8: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryo said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
5: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
9: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal.

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: गुड
1: मॉर्निंग. यानी यानी खन भी हो.
0: फिल्म
1: हे आई खो वाई हाइगे हैबा
0: होय होय
1: होय इसे जीबू इतने तो ताबी गदरो ना तरगा ताबी निंग भापी गदरो
0: ताबी निंग हाँ पर रही कंगला ते निंग बु ताबी दी बम ये चंग गप्पलंग ने देखे लाचा कर लाई बिदी बा आटुका ओ इसे जो ठंडिंग गिरो मिला
1: होय होय सोम न खंबिर अली बा हु चागे फिल्म गी सुरे नम दे पुष्पारानी अनि के पुन ब खोंजेल द हेरोजि नौरोबम न सैरेंग बा एके यांगोइन सैरांग बा इसेनी अदुदि खुदोल दमजर एके को

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम।
0: हाँ गुड मॉर्निंग।
1: मैडम मैं इनाउ चकाऊ जो मैं इंफान देगी।
0: होय होय सोमकारी फिल्म इसे ताबी निंबा।
1: मैडम वारो या दे फिल्म देगी ना।
0: होय होय
1: देगी इसे अरविंद शोभन का कुछ पारा नहीं करना सकता। कई दबो लेके ऐ गी नुशी बैंड तो वैसे तो
0: होय अदो ngasai somna khanbire be isei se ha jiki wele ti tahan ba ngam zaroi jore ato pa isei ama khanbir o
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯇꯥꯖꯔꯒꯦ, ꯔꯥꯖꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯦ꯫
0: ꯔꯥꯖꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ?
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯔꯥꯖꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ?
1: ꯂꯣꯟꯅ ꯁꯤꯠꯂꯣ ꯅꯔꯝꯕ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯅꯤ ꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯒ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯒ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯒꯖꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯃꯦꯟꯗꯤ ꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯨꯔꯁ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ?
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯍꯧꯒꯦ?
0: ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣ, ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣ.
1: ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯂꯧꯔꯤꯃꯝ ꯈꯨꯔꯥꯏꯗꯒꯤ, ꯁꯂꯥꯝ ꯕꯤꯃꯣꯇꯥ ꯋꯥꯒꯥꯏꯗꯒꯤ, ꯇꯣꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤꯕ꯭ꯂꯥ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ, ꯑꯗꯨ ꯏꯅꯝꯃꯩ ꯕꯤꯌꯥꯃ, ꯗꯌꯥ, ꯑꯕꯦꯝ ꯑꯕꯦꯝꯃ, ꯂꯥꯏꯕꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯒꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ꯫
0: ꯍꯣꯏ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯊꯥꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ꯫
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ, ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯃꯦꯗꯥꯝ꯫

0: हेलो, गुड
1: हेलो,
0: मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग.
0: मैडम आई खुराई देगी नंदिनी लोरियम बम मैडम
1: करी फिल्म से ताबी के दबा.
0: कोंगोल फिल्म की ने पुछोरे नि छक्वा लाव हाइगे लाव दजेगि लाम
1: कोंगोल फिल्म की लाव हाइगे लाव फिल्म दो क्वा.
0: हाय मैडम।
1: सबसे कई दो बीरा मिनो हो जे.
0: मैम आई मैडम सोरम तास नहीं जरा मी
1: अदो सोमना खानबीर इबे इसे से हाउजी की वने दी तहन बंगम जरोई दोरे अतो पा फिल्म मामा खानबीर ओ.
0: मैडम लोबे तारे तारा जुगी ने
1: लोई बता
0: ले जरा मैडम।
1: लोई बता रे तारा जु बको अंते
0: हाँ मैडम
1: इंजे ही को लोई बता रे तारा लाइनी लाइनी सोम सिगी इसे अमा हेते यार ब्रा तुम को.
0: नंगी नंगी चेंग लोग सतम दो ताजे लगे मंदा किनी का पुष्पा ने समीना बदो
1: होय होय नंगी सेंग लोग सप्तम दो न पुष्पा रानी के मंदा के निगे न सखपा पी के पांजी मयम न सैरेंग बा रन बि थोंना न सैरंग बि शेशि ने बकवा.
0: होय थैंक यू मैडम।
1: वेलकम. अदि सेई थाजे रगे कवा.
0: आई थैंक यू मैडम।

0: हेलो हेलो
1: हेलो। हाँ तो वो जी मक्कल फिल्म देखी ना आदमी शेखों का दाम बीगे ना थक पा त्याम ना जिंदर लुआंग ना थे रिंग का थे रंग बना तुम तो मैं नौरे मोई बताओ तो ताज़े के फोन तो जरे तो आई ना त्याम ने खांग कोंग का ये त्याम राम नी मैन आई ना सब ना हेलो है का तब तो आई ने वा
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯔꯧꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯦ
0: ꯀꯣꯔꯧꯒꯤ
1: ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯡꯕꯝꯒ ꯑꯦꯁꯤ ꯃꯆꯥꯒꯅ ꯁꯛꯄ ꯊꯩꯍꯧꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤ ꯅꯥꯄꯣꯝꯁꯦ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡꯅ ꯅꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯦꯟꯗ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯁꯪꯀꯔꯅ ꯇꯥꯖꯒꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ
1: ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯪ ꯀꯣꯡꯒꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯂꯥꯝꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯖꯩ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯩꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯀꯣ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯊꯥꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ
1: ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥꯔꯦ

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और अनुवांशिक अध्ययनों से पता

0: चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
1: जी।
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: एनसीईआरटी की तेंबांग लोयना संदोक जबथौरम उमंग ताबिरे।
5: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 जून की तांग कुनिपान फाउबदा बीएलओ हाइबदी बूथ लेवल ऑफिसर सिंह

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोक्चरी हेलो मणिपुर हक्सल थौरमदा इमरजेंसी द पुंसी कन्नब पाम्बई हाइरी भीरम असिदा एक्सपर्ट उन लेंसिन बिगदबी डॉक्टर सिराम राष्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन सीजा हॉस्पिटल थौरम लांथोक पीरीबा हैक्रुचम देवेंद्र थौरम असी सीजा हॉस्पिटल की तेंबांग लोइनना संदुकचबनी।

वांगखेम थाचमान भी देवी की नाई तुम खोजलदा मतम इसे हमखक मथंग मथंग ताबीरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक वेस्टर्न म्यूजिक की दमक मैरी स्लोनी दा खुशी नजरी।

0: ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕꯤ ꯃꯃꯣꯝꯂꯣꯏ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯔꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯆꯤꯗꯥꯏꯗ ꯄꯤꯛꯅ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯉꯥꯜꯂꯤꯕꯤ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯅ ꯉꯥꯛꯂꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟ ꯃꯥꯄꯜꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯇꯠꯍꯩꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥꯗ ꯆꯥꯡꯗꯥꯅꯗꯕ ꯎꯔꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯨꯠꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯀꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨ ꯄꯥꯟꯃꯩ ꯀꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨ ꯄꯥꯟꯃꯩ ꯏꯪ 1915ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 26 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯣꯡꯀꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯣꯊꯣꯅꯥꯡ ꯄꯥꯟꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯅ ꯀꯆꯥꯛꯂꯦꯟꯂꯤꯌꯨ ꯀꯧꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯈꯤ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝꯅ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩꯗ ꯈꯥꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯊꯥꯈꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯨ ꯎꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯅꯧꯖꯔꯤꯕꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯦꯖꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯦꯖꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯩꯕꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯈꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯄꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯅꯨꯄꯥꯇꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 13 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯄꯧ ꯖꯥꯗꯣꯅꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯈꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯨꯞꯆꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯦꯖꯁꯤꯡꯅ ꯖꯥꯗꯣꯅꯥꯡꯕꯨ ꯏꯪ 1919ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 19ꯗ ꯀꯣꯡꯒꯣꯏ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯔꯖꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 16ꯇꯃꯛ ꯁꯨꯈꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯖꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧꯅꯥꯗꯤ ꯅꯣꯡꯁꯥ ꯑꯃꯣꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤꯡ ꯖꯦꯜꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕꯤ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎꯒꯨꯝꯕꯤꯅꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯃꯩ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯜꯍꯟꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯈꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯁꯩꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯂꯣꯃꯤ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤ 1,000 ꯂꯩꯕ ꯆꯟꯒꯗꯕ ꯂꯥꯟꯕꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯦꯖ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯕꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯣꯏꯅꯅ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧꯗꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔ ꯅꯒꯥ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯈꯤ ꯄꯨꯂꯣꯃꯤ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯥꯟꯕꯟ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯅꯒꯥ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡꯒꯤ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯃꯤꯜꯁꯅ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯃꯦꯀꯣꯅꯥꯜꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯪ 1942ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯇꯥꯡ 17ꯗ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨꯕꯨ ꯐꯥꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯍꯤꯒꯤꯟꯁꯅ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤ ꯅꯧꯖꯔꯤꯕꯤ ꯆꯍꯤ 17ꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯈꯥꯡꯈꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯤꯌꯨꯕꯨ ꯅꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯨꯞꯅ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯪ 1997ꯇ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯂꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯥ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯈꯔ ꯂꯦꯜꯂꯒ ꯆꯍꯤ 56 ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯂꯣꯡꯀꯥꯎ ꯈꯨꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯒ ꯏꯪ 1993ꯗ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯂꯣꯡꯀꯥꯎ ꯈꯨꯜꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯌꯥꯍꯤꯞ ꯇꯥꯟꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯨꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1942ꯗ ꯇꯝꯔꯥ ꯄꯇ꯭ꯔ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1944ꯗ ꯄꯗꯃ ꯚꯨꯁꯟ ꯎꯄꯥꯙꯤ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
5: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम में 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी भाइयों का कार्यक्रम अब आरंभ होता है। फौजी भाइयों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत जतिन ललित का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से सुजाता त्रिवेदी और कमाल खान की आवाज़ों में। गीतकार है महबूब और संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म हमारी अधूरी कहानी से अरिजीत सिंह का गाया गीत। गीतकार है रश्मि विराग और संगीतकार जीत गांगुली। फौजी भाई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनते हैं फिल्म गजनी से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल का गाया गीत। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत AR रहमान का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म हम दिल दे चुके सनम से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत की आवाज़ों में, गीतकार महबूब और संगीत इस्माइल दरबार का।

आकाशवाणी इम्फाल चु तेल चो आंग रे पुम विशो हाइन आखाई सूल कपी चुनी कालो सूर दसो तेल हाइन हिन्दे मई वही सिंह वही नुखाई दे

फाइनेंस सिंह सिंह में तांडों का सुना सेंटर ने असम कनी नागालैंड सरकार ए करू ना नै करू नेपाल स्टेट कनाई को है सुंगपम में थाव कनी ने नेचुरल ग्लास फु खं कुमलाना पोथो फुंग प खं कथु मै बैक्टीरिया ना नुना में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोई सु कंथे यूनियन होम मिनिस्टर पो अमित शाह रे ना पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी असम तुंग चीफ मिनिस्टर पो हिमंत बिस्वा शर्मा खनि नागालैंड तुंग चीफ मिनिस्टर पो नेफ्यू रियो कजा मई मूंग खा कई एम एव यू तोय सुखी चौंगे कमूंग तला साम ग पो अमित शाह रे ना साकने एम ओ यू सोय सुना कमे है लोली सुमे कगन खथे खनि मैरुन कंदी खोई थाव खनि नेचुरल गैस फूम तुंग लुंगाई बुथाव पुनी थे कमेरुन सदकने इंडिया सरकार असम खनि नागालैंड एम ओ यू सोय सुना मई हैना करु नेपाल लमकान को तिंकुम तिंसांग नाइगों बमै कसेत के गेट नाम तै ngal lo kan the असम तुंग चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा रे ने सादा कने असम खने नागालैंड तोंग का को रमलै तोंग कसेत के गेट नाम नाइ बमै कगन तिंसांग मि लत बमै लबम तै असै तो थनथेक थे मिथाय बन थे मिरे करम छुना कबम खोते नाइ बमै को लुलुंग तोंग रिसोर्स कोइ तै कंदी खंग छुने सिंचु नुंगम पुनी थे गलाव गोई तो लेबर्स ने सिंचुमी लू को दिंग में दिगुन पदे तुंग तिमी कुमचिंग ने चुचरुबु असै मणिपुर को नि लांग पद बमे सेदो तिंग कुम तोंग तिमी खे तो मुंग थीम है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन डिटेन वर्क फॉर एडल्ट तुम खवे तिमी खवे लदिन खत लोन चीफ मिनिस्टर ना साकने तिमी खैने अनि मैगुई खोय गलाव गोई तोंग पंती गांग मई खनी ना गलाव गोई ती है कगुन नाइ मी एजुकेशन खनी कदौचा मी तान मन तिलो खंग तुमै ललेन द किनिंग तो बुम थे सि मिनिस्टर पो खेम सान सिंग रे सा दकने अनि मैगुई न रे ना गलाव क गोई नि त लाइक ले सु सम मई तरी मई खनी सिंग सिंग मई छुन दे थांग ngam मई तोंग पंती लोन ख क सेम गगे नाये कामजोंग डिस्ट्रिक्ट तोंग कुलतु कैरोंग को दरानु तमाय कमना में मुंग पक में तंग होता असम ने फुल न कदिंग को मई कन मई खनि न मेडिकल ऑपरेशन तक कई कने सोशल मीडिया को पत को में असम ने फुल तुन ललम खल ने सकने तमाय कमना में सम सुर पुरे कदिंग होता असम ने फुल तुम मई नुन कबम को तो गुलना कभी मई चराय मई गानाई फास्ट एट ती कने कुमना कबम कन लजाव खंगवे न कगन चाना कबम खौत्रि न फुगुत खंग करम कने कभी में खतु लेमें खोंग नाई में मिलिट्री हॉस्पिटल को हेलीकॉप्टर में फूंगने कुमलना खतरे न गाड़ी को फूंगपत कने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट क्वासीफाई को नाई में मादर प्राइड एकेडमी रे असाई करे ने नेशनल फाइनेंस लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट NFLA टी को कजाव न चमना गोई को सेंडुई लम को ज्ञान तिता कंग करम में को दायन कदम लाभ में अनेक तो बिष्णुपुर चमला में रेना साकने NFLA टी है कंदी का पुम नको ऑनलाइन को लांग पम में कंप्यूटर को सुमाय एग्जाम है असै खुरिना मै बुतुम बुजांग लुबदै ngan ta kai puni mai he national center for financial education ncfe mumbai re na samna utunge fifa world cup punching ne chi chubut tatki mai jimang khau mexico kai dai tong loli sukmai stadia आस्ते का खो कहो कंधे वर्ल्ड कप कुम सिंगल चिश्रु कुतों तत्कम जिप चुंग तंग खो मखाई कई भी खो परुक मई लई में मैच खोता मेक्सिको रुना साउथ अफ्रीका ते गोल कनाई चिनो को जिलो कने मेक्सिको कैदा जापो पान को असे लखथों खों सने मखाई कई भी गन को परुक मई ग्रुप ए तो मैच का खुरिना साउथ कोरिया रुना चेकिया तिया गोन कनाई खत को जिलो कने सेदो तिंगकुम तों वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनी कनाडा रन होस्ट ने लांग पद बमे गोंगदेन मई बु तों बुजान लु सकुंग ने तत्कै ने मई टूर्नामेंट खवै टीम लेगते तसल ले कजा बमे खम को कबी सुमे चम गनसा यिनन होम मिनिस्टर पो अमि सहार इन द साबमे स्टे खत कनै राम मंग ना कलु ने प लमकान तों कबम कथुइ न खौ गोंगदे ब मई तिंकुंग खौ आपस्पा क गोइ ने लपनु मई थै नाइ बन थे सेंटर इन असम कने नागालैंड सरकार ए सुंगपम मई थाव खनि नेचुरल ग्लास फु खं खनि पोथो फुंग प खं कतु मई बुंगुंग खौ नुना मे एम ओ यू सोय सु कन थे खनि फिफा वर्ल्ड कप कुम चिंगने चिस्रुबु थाक मि जिमंग मेक्सिको कैदाय तो लोली सुकमे स्टेडियो आस्ते का खौ कहो कन थे असै तो मैच खौरे ने मेक्सिको खनि साउथ कोरिया रिंग जाव पाव कने असै बदु मिदे खचंग लौ थे।
katang ko king de ko mego na nu ni na postcard de ko kapa ga mai lutan thaurai mi ko thiu mai kani mathi hom kanai khon krui pumsa gai mai ingan ai ru tan sun thong lu ka mai ru te nu ni na postcard ti ga bom goi ti thu tameng long khru na ga khan liu makum liu roma liu ga sing liu kani lungai ga mego king sam lo di ko

आकाशवाणी इम्फाल इचि चुक्रो हुंदा पुंगो हेपे माके गुडे माउ चोसुफु सोचुताए ही ही मेडियम वेव मीटर क्रको सरे पदे किलोहर्ट्ज क्रच चर चक हेले रुनि लोसे इजो जो पुंगो नि ही जो कोलो चक्र नि आकु दोव कपी माइ दनो सो कदा बे ये केयर गाइडेंस फॉर नो इंटरफेस आकु प्रको चो बे र इजो को माउ लले नन लेशे आकाशवाणी इम्फाल इजो को कैसा दा हम हेनो प्रबिले इजो ही वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जिथु ही

आकाशवाणी इम्फाल और हूं खी वांग अचु इपाउ चाई वन अहम सिमरान पादे रिमिकप खमता इपाउ सेंडर असम सरकार खल नागलैंड सरकार हुई आलूंगे असम नागलैंड बॉर्डर हुई मूसोक रंग जे थल नेचुरल गैस पिंग खुशोक वाई हुई वांग ट्रिपरटाइट एमओयू अग सोई संग रोखाईरा खला मणिपुर विसीट अखमांग राज्य सफा इलेक्शन ले बीजेपी वी मिंगनिंग अतिगारी मयूम सरदार देवी ले अनअपो सिने कपंगाइरा अरा पाउपिंगजे मैसाइन पामेदे मथाला कहाय फैकार अखले सेंटर सरकार असम गल नागालैंड सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स खनी हुई अलुंगली मुसुंगशोक रंग गजे थाउ इन नेचुरल ख्यास फाखवाई गल खुशो खवाई ट्रिपरटाइट एमोर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू अग साइन संग रोखाइरा यूनियन हाउ मिनिस्टर अमित शाह पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कल नागालैंड वी चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो अथमपिंग कजंग कसीब अखले एमओयू ची सोई साखंग रोकना रानी चिले मुथुई मिद खुरा अमित शाह ने हांग एमओयू सोई साखंग रोक हिस्टोरिक मोमेंट अखना गला हिना लै हिले थाउ गला नेचुरल गैस कफा हुई गजहान मताई संग सखाउरा अन कहांग इंडिया सरकार खला असम इन नागालैंड ने एमओयू सोई साखंग संग रोक हाई हिना नॉर्थ ईस्टर्न अपम ने अतम गसंग लैराग हाय बाउंड्री इशू जिल कुपसंग सखाउरा असम वी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हांग असम इन नागालैंड वी अलुंगले थरी वी इशू लेदक लेही अतम गसंग लैराग हाय टीशर्ट अखना हिने मरम सादा अपम जिले लेदक ले नेचुरल रिसोर्स पिंग ngलेही विवांग मशीजिन पाइथु गुचिना नागालैंड वी चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो नला असम नागालैंड बाउंड्री ले मिनरल वेल ऑपरेशन क्विका खवाई ट्रिपरटाइट एमओयू सोई साखंग रोक हिस्टोरिक माइलस्टोन अखना हांग आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट जल लेबर 2026 सिमिक्शो मयोन हिले चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान खमीचान पाओ अखले कहंग नाउसनाउ पिंगली मथाला गई वोटम तमश खंग ngasak da khamathaw mi avava ngasak ngasak kala nawshnaw pingni nga khami gi chi hi itum saikarawi ot ngarutna itum ngarum da nawngra pingwi mirin semka misada hanga chingkum hewi timna red card to child labor fair play to children decent work for adults na manipur le arya rajya safa elections le bjp wi mingning अतिगारी मयूम सरदार देवी ले अन अपो सिने कपंगा हाइरा मणिपुर वी सिद अख मांग जी राज्य सफा इलेक्शन ले कुरम ला सरदार देवी अमांग न मिंग निंग लाइरिक मिसंग अरुरी बीजेपी वी मिंग निंग सद मणिपुर वी एन राज्य सफा एम पी पुंगदक लेशंबा सना चौबा वी धर्म हे अचुक चांग वी

ताबिरे बोयतोन मांग्रेब फिल्मसीदा सुस्मिता मांगसाताबम अमदी कृष्णमूर्ति अनी अपुन खोजेलदा दिना ओइनामना सैरिंगबामदी सैरांगबैसे मतंगदा मुकदल तमजरी संध्या की आश्रम फिल्मसीदा उसारानी सपैसेयमा सैरिंगबा बिमलजान मांगसाताबा सैरांगबना नोमाइतेम सोलेंद्रो

तई कौबुद्र कर्म अनुपीनो में संग थीवने इतई कौरी बजी को करीगिनो हायुब कांदे दी इमा कया दी कोई हे चखी बा पीरदा नहा मु कोई हे इमा आई हूं तो तालु गे देना लांगोई से।

0: सुनीता कई दौर के नोबो मैं फम से नशा इहै हईनी उ नी पाबूंग चईगा तौरप्रो
1: अदुना दे तामो हंदाखै पाबूंगदो मीना यान लाक्चखिब यान उसिपिखिदबगी थौंग मानबा अमा अदुगने मचानुपा पोकते काइना तौरीब्रा काइना पाबूंगे वखलद पंखनद खंदुनाने हराव हरावना चाब थकप तौदबदुद आइसे सुम नुङाइत्रे दाम
0: करी नुहारिबसुपो अदुगनंगदि आइगोंद पोंग तसुपिरक्तब नति पोंग त हायरक्त्रिब करीनु ममा नुपा मा चौ चौ चिंजोगुम लेतुने लेडी हैबसी नति मखुइबो खंगदि हैब्रो ममा नुपा मा काइना तामो मा याम कनसुलकनु को आयाम हैना देको आयाम इकाइजे हाइसने नंगा इगा नुसिनारबनिना नखुइ पाबुंगी ममा नुपा दु आइनोइ पमथौत्रो नति सिबु चुमदब्राबा
1: हो अदुबो हौजिकति ओइद्रिदना
0: ओ ओइगदब मतमदो खोंग थांगदोक्तुने लेडी हैबगी वानी
1: याम इकाइ खंगदि
0: अदुनाबो
1: ခုံထံတော့တူနဲ့လေရဲဟိုင်ဘီဝါနီအဲအဒူနာဘူအဲအိနာနန်ကြီးနတုံဒနန်ကြီးနမီကုမ်နလေပလီနခွေကြီးအမှုန်ကြီးရှုခရတနီယုံနီအိနာပဘုံဒကအစီဆဲနမကနူပါအိုဂဒေါရီဘဒူနေအနာချာအိကနုံစီနာဂျဘာအခန်းဂျဘာနူပါဒိုအစီနေကိုင်အိနာတောက်တိုရီဘိုင်ဇဲအဟေးမမငိုက်တဒီအဟလမန်စင်နခန့်ခီနီဒနာယမ်နိကိုင်နရမ်ဘာဟိုဂျက်မတမ်ရှိဒဒီမမမပါဒ
0: करम ना खंगन गनी इधर ना होता ना बताना है बाखंग ले शाबी सिंह दी आई ना तुमने बने
1: आई ने नशी ने तमोना एंगों ने भागी तो जरा कनु को कनासुले ती का ना कोई बुदा मोना फाउ कई सुखन भी दब मानु को
0: नते नते सुनिए से नंग ने लाल खल ले बसे ये आई ने हिंगली बपुन सी से नंगी मिलू की पीरांग उधर भागी तमक ने सुनिए नंग नहीं बुथा जाओ थाजब मफम द लाई लाई अदुग ऐसे साउरबदिने करपिगबदिको ऐ येगुतु ऐनेने तमक हेक तौबगा ऐने तौथरा कदम मयाव दो लंगे गोवला

0: ताबीरे याइफयुम्बाल गी लीला मचा लफोई फाइबो लीला असीद सक्तम लांगकीब सिंगदी मनी गी सक्तम दा निंगोंबम गांथोई मितै तोंबगी सक्तम दा बीरदीप यांगलेम थाजगी सक्तम लांगकीबी गुरुमयुम कल्पना सुनीता गी सक्तम दा हैक्रुजम जमुना लीला इब मोइरांगथेम अजीत सिंह लीला पुथोकपा थोकचोम रेनुबला पुथोकपद तेंबांगब हेमचान निंथौजम
1: ताबीरे याइफयुम्बाल गी लीला मचा लफोई फाइबो अइब मोइरांगथेम अजीत पुथोकपद तेंबांगब हेमचान निंथौजम थौरम सिबु पुथोकपी थोकचोम रेनुबला अदुमना थौरम ताबीरिब असे आकाशवाणी इम्फाल गी कांगला चैनल की निमिदांग की थौरम परेंगे हौजिक अमुक लानथोक्सरी तोंगान तोंगानब फिल्म दा अदुमना पोस्टकार्ड के खुथांग दा खनबिरकप इसै सिंह कदोल की आहान बोइना ताबीरसी नंग लोइरे फिल्म सिदा ए जे मैस्नामामदि पुष्पारानी अनिगे अपुनब खोंजेल दा दालोम गुरुमयम न सैरिंगब राहुल ब्लूना सैरांग बिसै इसै एसिपु ताबीनिंदुना सिधि थाबीरकलीबना कोंथौजम ममांगलेकाइदगी बिमोल निंथौजम हेमावती अमदी एलिस

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। 12 जून की सुरमई रात, गर्म हवाओं की चादर में लिपटी हुई दिल्ली हर सिंगार की तरह महकती हुई, सर सर कर जिंदगी की मुट्ठी से फिसलती हुई, वक्त की शाखों से दरकते लम्हों से मानो कोई आवाज सी आती है। वो आवाज कहती है, जिंदगी की न टूटे लड़ी। फिल्म क्रांति का ये गीत आपके लिए।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी तो हर पल पुकार पुकार कर यही कह रही है, लेकिन ना जाने दिल को किस किनारे की तलाश है कि ख्वाहिशें उम्र भर बस दौड़ाए रखती हैं और इसी जद्दोजहद में इंसान जीना भूल जाता है। ऐसे में कोई साथी जब अपनी प्यार भरी निगाहों से मन को छूकर जीने का इशारा करता है तो यूं लगता है कि जैसे सब कुछ बदल गया और हम अनायास ही गुनगुना उठते हैं। फिल्म याराना का ये गीत।

उनके मन को छू लेने से मौसम तो बदल जाता है, लेकिन जिंदगी के मौसम में ना तो बहारें टिकती हैं और ना ही खिजाएं। हाँ, मगर जीने वाले दोनों को ही जी भर के जीते हैं। वो कहते हैं कि उठो कि जश्न खिजा हम मनाएं जी भर के, बहार आए गुलिस्ता में कब खुदा जाने। एक और गीत आपके लिए फिल्म आंधी से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

आ गई हो, नूर आ गया है, वरना जिंदगी बेमायने थी। दरअसल वक्त की बहती धारों पर भागते दौड़ते हम कब आगे बढ़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, मगर हर सफर का जो बहाव होता है वो अपने साथ सब कुछ नहीं ले जाता। जिंदगी के कुछ लम्हे रास्ते में ही टूटकर कहीं गिर जाते हैं, और उन्हीं लम्हों के साथ कुछ अधूरी कहानियाँ, कुछ अनकहे जज्बात, कुछ अधूरे सवाल भी पीछे रह जाते हैं। वे वहीं किसी मोड़, किसी गली, किसी पुराने मौसम की तरह ठहरे रहते हैं, चुपचाप हमारा इंतजार करते हुए। और फिर किसी खुशबू में, कभी किसी अनजान चेहरे में, कभी किसी गीत की धुन में वे फिर हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और याद दिलाते हैं कि कुछ कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वे बस हमारे लौट आने का इंतज़ार कर रही हैं इस गीत की तरह।

देखिए, इश्क की किताब का हर वर्क वफा की दास्तानों से ही नहीं भरा होता, उसमें कहीं शिकवों की स्याही भी होती है, कहीं इंतजार की लंबी रातें आहें भर रही होती हैं, तो कहीं बेवफाई के धुंधले निशान सिसक रहे होते हैं। मोहब्बत की दुनिया के कितने किरदार अपने महबूब की बेरुखी और जुदाई से ही जन्मे हैं। अजीब दस्तूर है ना इश्क का भी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

रूह में मन के दरीचे से कोई झांक गया, जुल्फ़े एहसास में खुशबू की किरण टांग गया, पाश पाश आंख में आईना हुआ किस लौ का, कौन अंधेरे में माहौ कह कशां टांग गया। वो अजनबी जब भी मिलता है तो यूं लगता है जैसे जिंदगी की तस्वीर बदल गई, और फिर दिल राजेंद्र कुमार और साधना की तरह ये कह उठता है कि हाँ पाए बाहर आई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए और

0: जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है,

0: पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज़ रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंदन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से विचार से आत्मा से सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी हैं वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे। जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर का की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियाँ आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुँचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहाँ व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास

0: से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसे जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में ताप के लिए। पहला गीत फिल्म रेशमा और शेरा से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: ये गीत था फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म साजन से।
1: रेशम की डोरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said, the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Union Cabinet Secretary Dr. T.V. Somanathan has reviewed the preparedness for the NEET re-examination in a meeting yesterday with the Director General, National Testing Agency, Abhishek Singh. He said that the central government, state governments and district administration are working together in close coordination to ensure smooth conduct of the NEET re-examination. Meanwhile, the NTA has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UGC 2026, scheduled to be held on 21st of this month. Tripura Chief Minister Professor Manik Saha has presented the state's key development priorities and infrastructure requirements during a high-level Niti Aayog interactive session with northeastern states in New Delhi. The meeting, held in the presence of Niti Aayog Vice Chairman Ashok Kumar Lahiri and other members, focused on accelerating regional growth and governance reforms. A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The opening match of the 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup is underway, with host England taking on Sri Lanka at Edgbaston in Birmingham. Put into bat first, England were 135 for 1 in 13.4 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आपने सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। मौसम सुहाना हो और वीकेंड साथ हो तो हर पल में एक अलग ही मिठास खुल जाती है। दिल बेवजह मुस्कुराने लगता है और जिंदगी कुछ और हसीन लगने लगती है।

ओ सनम, बस यही ख्वाहिश है कि हम दोनों का साथ यूं ही बना रहे। वक्त चाहे कितनी ही करवटें बदले, जिंदगी हमें कितने ही इम्तिहानों से गुजारे, मगर हमारे बीच का अपनापन कभी कम ना हो। हर सुबह तेरी मुस्कान से शुरू हो और हर शाम तेरी बातों की मिठास मिठल जाए। आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

छोटी छोटी तकरारें रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि अगर उनमें अपनापन और समझ हो तो वही रिश्ते को और गहरा बना देती हैं। रूठना भी एक एहसास है और मनाना भी एक प्यार भरा इजहार। आखिर मोहब्बत का मजा ही क्या अगर कभी कोई शिकायत ना हो और उसे दूर करने की मीठी सी कोशिश ना हो। लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना था, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

तुम्हारी कसम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद तक्षी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 22 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी आपने सुना चरित्रहीन फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। जी हाँ, दिल से दिल मिलने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर मुलाकात यूं ही नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त की किताब में पहले से लिखे हुए लगते हैं। कभी किसी की बात में अपनापन मिलता है, कभी उसकी खामोशी भी अपनी सी लगती है। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं, बिना ज्यादा कहे एहसास बढ़ने लगते हैं, तो लगता है कि इस जुड़ाव के पीछे कोई अनदेखा सा कारण है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ में भी खास बन जाते हैं और उनकी मौजूदगी दिल को सुकून देने लगती है।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसमें संगीत दिया। रिश्ता ऐसा हो जिसमें दिखावा ना हो, बस अपनापन हो, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलें और साथ होने का एहसास हर पल दिल को छूता रहे।

दूरियां फिल्म का गाना आपने सुना, भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। तुम्हारे आने के बाद जाना कि कुछ लोगों की मौजूदगी जिंदगी को बदल नहीं देती, बल्कि उसे एक नया अर्थ दे देती है। अब हर खुशी थोड़ी और खूबसूरत लगती है और हर पल में एक अपनापन सा महसूस होता है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 20 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

0: ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहाँ के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, "The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation." He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

जन्म जन्म के फेरे। इस फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने। ये मीठी तान आज भी कानों में पड़ते ही दिल को सुकून दे जाती है, जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद हाल पूछने आ गया हो। पुराने गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जज्बातों का खजाना है, जो हर दौर में दिलों को जोड़ते रहते हैं।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। पुराने गीतों की मीठी तान दिल के किसी कोने को छू जाती है। इनमें शोर नहीं है न दिखावा है, बस सादगी, एहसास और मोहब्बत की खुशबू। कभी किसी सुर में चांदनी रात उतर आती है तो कभी किसी धुन में बिछड़ने का दर्द। उन गीतों को सुनकर लगता है जैसे बीते हुए लम्हे फिर से मुस्कुरा उठे हों और यादों की महफिल सज गई हो।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने गीत की दर्द भरी पुकार आज भी दिल के तार छेड़ जाती है। इन सुरों में बिछड़ने की कसक है, इंतज़ार की बेचैनी है और अधूरी मोहब्बत की कहानी है। जब कोई पुरानी धुन हवाओं में खुलती है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ खड़े होते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ नम आंखों के साथ।

अजी बस शुक्रिया फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ में फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

वक्त हुआ है 1:27, वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़ी बहन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हुसन लाल भगत राम ने।

परवरिश फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया दत्ताराम वाटकर ने। अपने जज्बात बयान करने का सबसे सीधा और खूबसूरत जरिया ये पुराने गाने हैं। जो बातें कभी लफ्जों में नहीं कही जा सकी उन्हें इन गीतों ने सुरों में ढालकर दिल तक पहुंचा दिया। कभी मोहब्बत का इजहार बनकर, कभी इंतजार की आहट बनकर, तो कभी जुदाई की कसक बनकर, ये गाने हर एहसास को आवाज दे देते हैं।

एक सपेरा एक लुटेरा, रफी की आवाज में आपने गीत सुना। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया उषा खन्ना ने। कितना दर्द छलकता है इन गीतों में, जैसे किसी ने अपने दिल की सारी कसक सुरों में पिरो दी हो। कहीं बिछड़ने का गम है, कहीं अधूरी मोहब्बत की टीस, तो कहीं किसी के इंतजार में गुजरती लंबी रातों की दास्तान।

मतारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बड़ी बड़ी बातों को कितनी आसानी से कह दिया करते हैं ये पुराने गाने। जो बातें कभी किताबों में समझ नहीं आती वो दो चार पंक्तियों में दिल तक उतर जाती है। मोहब्बत हो, इंतजार हो, जुदाई हो या जिंदगी का कोई फलसफा, पुराने गीत बिना शोर किए गहरी बात कह जाते हैं।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जी हाँ, इन गीतों के अल्फाज सादे होते हैं मगर मायने बहुत गहरे। यही वजह है कि बरसों बाद भी इन्हें सुने तो लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े सलीके से कह रहा हो। पुराने गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसासों की ऐसी जुबान है जो हर दौर में समझी जाती है और जाती रहेगी।

बादल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। हल्के फुल्के दिल को छू लेने वाले पुराने गाने जिंदगी की भागदौड़ में एक मीठी सी राहत जैसे लगते हैं। ना इनमें शोर होता है ना बनावटीपन, बस सादे अल्फाज, मधुर धुने और सच्चे एहसास।

0: जबक फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतलुआ अंगकीमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथान संगीव हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defence technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media at a programme in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: The West Bengal government has assured special support for farmers in the agriculture sector in North Bengal with particular emphasis on potato and tea cultivation. State Minister for Agriculture and Agri-Marketing, Rural Development and Panchayati Raj, Dilip Ghosh, said this while addressing the Kanchenjunga Agripreneurs Meet in Siliguri. He said the government will give special attention to the welfare of farmers engaged in potato and tea production in the region. External Affairs Ministry has summoned Shardid Affairs of the United States, Jason Neitz, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Union Cabinet Secretary Dr. T.V. Somanathan has reviewed the preparedness for the NEET re-examination in a meeting yesterday with the Director General, National Testing Agency, Abhishek Singh. He said that the central government, state governments and district administration are working together in close coordination to ensure smooth conduct of the NEET re-examination. Meanwhile, the NTA has extended the examination window by 15 minutes from 118 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on 21st of this month. A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. Former Defence Minister Kim Yong-hyun also received a 30-year sentence for his role in the operation. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Xiuyu in a one-sided quarter-final clash yesterday. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final today. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

चितचूर फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और यीशुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुरमई हो, हवाओं में नमी खुली हो और कहीं दूर से कोई मधुर धुन कानों में उतर आए, ऐसे में दिल चाहता है

कि कोई अपना पास आकर बैठ जाए, दूरियों के सारे फासले मिट जाएं और खामोशियों में भी मुलाकातों का एहसास मिलने लगे।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म से आपने गाना सुना। हेमलता की आवाज में रविंद्र जैन ने इसको लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। जिंदगी की धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर प्यार की छांव साथ हो तो सफर आसान लगने लगता है। अपनापन, विश्वास और स्नेह की ये छांव यूं ही बनी रहे, यही हर रिश्ते की सबसे खूबसूरत दुआ है।

सौदागर फिल्म का गाना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत दिया रविंद्र जैन ने। फूलों की महक हो, चांदनी की नरमी हो, या किसी की सादगी में छिपी रौनक, दिल हर उस एहसास की ओर खिंच जाता है जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दे।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, जैसे कोई मीठा सा ख्याल हर पल साथ चलता हो। हवा भी कुछ अलग लगती है, मौसम भी सुहाना लगता है और हर छोटी सी बात में एक अनजानी सी खुशी झलकती है। शायद दिल ने किसी खूबसूरत एहसास को अपना लिया है, तभी तो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गज़ल सुनी तलत अज़ीज़ की आवाज़ में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। जी हाँ, ये साथ कितना प्यारा है, जैसे ठंडी हवा का एक नरम झोंका, जैसे बरसों से बिछड़े किसी गीत की मधुर धुन। तेरे साथ चलते हुए रास्ते आसान लगते हैं और हर पल में एक नई खुशी का एहसास जाग उठता है। जिंदगी की भीड़ में बस यही लगता है कि तेरा साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि यही मेरे लिए दिल का सबसे खूबसूरत सहारा है।

वक्त हुआ है 2:42 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथ साथ फिल्म से आपने ये गजल सुनी। जगजीत सिंह की आवाज में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। तुम्हें देखकर लगा जैसे किसी लंबे सफर के बाद मन को एक सुकून भरा ठिकाना मिल गया हो, अचानक सब कुछ थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा हो। हवाएं, मौसम और वो पल जो अब तक बस यूं ही गुजर जाया करते थे, ऐसा लगा जैसे दिल के किसी कोने में छिपी एक पुरानी धुन फिर से बज उठी हो और उसकी मिठास देर तक साथ बनी हुई हो।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा मीर तकी मीर ने और इसका संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना गोयल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा

0: समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, "The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscapes across the nation." He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian Marines on the

नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, शोर और जिम्मेदारियों के बाद अब वक्त है कुछ पल अपने लिए चुरा लेने का। जी हाँ, ये वक्त है कार्यक्रम हमराही का और मैं हूँ आपके साथ आज रात की हमसफर अर्चना गोयल। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात की ये खामोशी भी अजीब होती है। दिन में जो बातें सुनाई नहीं देती वो रात के सन्नाटे में धीरे से दिल तक पहुंच जाती हैं। तो आइए आज की इस शांत रात में कुछ बातें करते हैं, कुछ यादों को छुएंगे और कुछ पलों को बस महसूस करेंगे।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म महबूब की मेहंदी से। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। दिल सवाल करता है, रात जवाब देती है। कई लोग इस वक्त अपने घरों में होंगे, कोई नींद के आगोश में, कोई किताबों के साथ तो कोई किसी की यादों के साथ, और कोई सिर्फ खुद के साथ। आज अगर आपके मन में कोई अधूरी बात है तो उसे थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दीजिए। ये रात है ना, उसे संभाल लेगी।

दोस्तों, रात हमें सिखाती है कि हर अंधेरा डरावना नहीं होता। कुछ अंधेरे सुकून भी देते हैं, जैसे आसमान के सितारे दिन में नहीं दिखते। वैसे ही कई बार हमारी ताकत भी मुश्किल समय में ही नजर आती है। एक छोटी सी बात, हर दिन पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खत्म होकर हमें कुछ सिखा जाए, ये जरूरी है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने धरती फिल्म का गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और 57 सेकेंड।

कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका असर वही रह जाता है और रात उन यादों को आवाज़ दे देती है। अगर आपका भी किसी की याद आ रही है तो उसे रोकिए मत। ये यादें ही रिश्तों की एक खूबसूरत भाषा होती है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, फिल्म थी बेटी। और अब कुछ पंक्तियाँ इस खूबसूरत सी रात के लिए। खामोशियों में भी आवाज़ें होती हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए। रात ने पूछा, क्यों जाग रहे हो? हमने कहा, कुछ सपने अभी बाकी हैं, जो बातें दिन में न कर सके उन्हें रात ने चांद को सौंप दिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म में ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। हर प्यार को शब्द नहीं मिलते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बातें कम एहसास ज़्यादा होते हैं। वो हर दिन हाल पूछना नहीं लेकिन हर दिन याद करना होता है। वो साथ चलना नहीं लेकिन दूर रहकर भी साथ निभाना होता है। और शायद यही सबसे शांत और सबसे गहरी मोहब्बत होती है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी कहानी में आते हैं लेकिन मंजिल नहीं बनते, फिर भी उनकी जगह कोई नहीं लेता। और अजीब बात यह है कि खामोश मोहब्बत शिकायत नहीं करती, वो बस दुआ बन जाती है। जहाँ भी रहो, खुश रहो, शायद यही सबसे सच्चा रिश्ता होता है।

धीरे धीरे इस सफर को यहीं रोकते हैं। आज की रात अपने मन को थोड़ा हल्का कीजिए, पुरानी बातों को माफ कीजिए और आने वाले कल पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। अगर किसी की याद आई है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हर याद किसी खूबसूरत पल का सबूत होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामूहिक समूह प्रणाली के

0: महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतुअंग अंकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगी हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाज़ों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाज़ों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाज़ों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला जापान के विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields, such as drone technology, is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. External Affairs Ministry has summoned Shadid Affairs of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian marinos in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said he spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio last evening and reiterated India's strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a social media post, Dr. Jayashankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 4:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, एक नए दिन की पहली सुबह के साथ आपका स्वागत है। रात की चुप्पी अब धीरे धीरे विदा ले रही है और आसमान पर उजाले की एक पतली रेखा दिखाई देने लगी है। ये समय है ठहर कर अपने भीतर झांकने का और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का। तो शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। आज की भोर की बेला सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और मुस्कुराहट भी लाई है। इस उम्मीद विश्वास में अगर ईश्वर की प्रार्थना भी शामिल हो जाए तो क्या बात है। सुनते हैं भक्ति से भरा गीत।

कभी महसूस किया है सुबह की हवा कुछ अलग होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक सुकून होता है। सुबह हमें सिखाती है कि हर दिन नया हो सकता है। पेड़ हर दिन नई हवा देते हैं, सूरज हर दिन नई रोशनी देता है, तो क्यों ना हम भी अपने मन में नई सोच क्यों ना लाएं।

दोस्तों, कई बार हम जीवन में बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सुबह हमें याद दिलाती है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी होती है। एक कप चाय, खिड़की से आती हवा, घर वालों की मुस्कान और ये एहसास कि हम एक और नया दिन देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, अगर मन में कोई बोझ हो तो सुबह उसे थोड़ा हल्का कर लीजिए। हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं मिलता, लेकिन हर सुबह हमें उसे देखने का नया नज़रिया देती है। आज किसी अपने को एक प्यारी सी बात कहिए, किसी का हाल पूछिए या खुद के लिए 5 मिनट निकालिए। कभी कभी सबसे ज़रूरी मुलाकात खुद से होती है।

दोस्तों, जब सुबह होती है तो मन भी शांत होने लगता है। 2 मिनट आंखें बंद करके बस इतना कहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला पल है उसके लिए विश्वास। और यही विश्वास जीवन को हल्का बनाता है।

कल कैसा था ये अब कहानी बन चुका है, आज कैसा होगा ये हमारे विचार तय करेंगे। अगर मन में कोई अधूरापन है तो उसे आज पूरा करने की शुरुआत कीजिए। अगर कोई सपना रुका है तो आज उसे फिर आवाज़ दीजिए। याद रखिए, सूरज हर दिन इसलिए नहीं निकलता कि दिन बदल गया, वो इसलिए निकलता है कि हम बदल सकें।

दोस्तों, दिन भर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या आप खुद से मिले हैं कभी? सुबह का समय यही मौका देता है, कुछ पल अपने साथ बैठिए, सोचिए क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपको थका देती है। मन की सफाई भी उतनी ज़रूरी है जितनी घर की। आज का विचार है कि धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस सुबह की ताजगी को अपने साथ रखिए। आज का दिन मुस्कुराकर शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और की मुस्कुराहट की वजह बन सकती है। मैं आपकी साथी अर्चना गोयल, आपसे फिर मुलाकात होगी भोर सुहाने के अगले सफर में, आपसे कुछ देर बाद 5:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jayashankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Polo flagged tanker MT Sedabero off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the three missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Charter Affairs in New Delhi. The Ministry of External Affairs said it had conveyed its deep concern over the use of lethal force against civilian shipping and stressed that attacks on commercial vessels undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. MES spokesperson Randhir Jaiswal had earlier said that attacks on merchant vessels carrying Indian crew members must cease immediately. He also called for dialogue and diplomacy to ensure an early return to peace and stability in the region. Defence Minister Rajnath Singh asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. Inaugurating the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex in Hyderabad, the Defence Minister said that the systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Mr. Singh emphasized that strength is essential for peace and that self-reliance is the most reliable foundation for that strength. Prime Minister Narendra Modi will visit Slovak Republic from tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will hold talks to Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion in 2024 and reached $1.8 billion last year. Union Minister for Heavy Industries and Steel H.T. Kumaraswamy has said that Prime Minister Narendra Modi has placed unprecedented emphasis on manufacturing-led growth and employment generation, which has accelerated industrial growth and created large employment opportunities. He said this yesterday while addressing the 65th Foundation Day celebrations of the Central Manufacturing Technology Institute in Bengaluru. Mr. Kumaraswamy said the Central Manufacturing Technology Institute, headquartered in Bengaluru, is making significant contributions to research in the strategic sector.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। सुबह की इस कोमल बेला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम भोर सुहाने के साथ मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वो समय है जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस शांत समय में अपने सपनों को नया आकार दे रहे होते हैं। कहते हैं कि सुबह सिर्फ समय नहीं होता, एक एहसास होता है, और आज इसी एहसास को महसूस करने के लिए हम और आप साथ हैं।

देखिए ना, बाहर पेड़ बिना शिकायत के खड़े हैं, हवा बिना शोर के चल रही है, आसमान बिना रुके रंग बदल रहा है। प्रकृति हर सुबह एक बात सिखाती है कि जीवन को